0: अभी अरिजीत सिंह इज नॉट दैट मच, उतना ट्रेंड में नहीं है, ठीक है, जितना पहले था.
1: पहले था,
0: ठीक है. अभी विशाल मिश्रा का ट्रेंड शुरू हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है. अभी तक आया नहीं है वहां पे.
1: पर जैसे तूने बताया ना कि वो जैसे गायब हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद.
0: एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द सिंगर्स,
1: इट इज टू डू विद देयर
0: इंडस्ट्री, राइट. माय क्वॉम इज और ये मैं पहले बोल चुका हूँ, माय क्वॉम इज, मेरे को ऐसा लगता है कि अ गुड सिंगर डेवलप्स with his age, he's singing matures with his age.
1: I would say the same for an actor.
0: Same for an actor.
1: क्योंकि artist हो ना आप.
0: Right.
1: तो आपको जैसे, सीखना पड़ता है, आपको break लेना पड़ता है.
0: हाँ, अभी जैसे KK, ठीक है, वो जब भी आया था, तभी वो जिस तरह से गाना गाता था, ठीक है, and then towards the peak, मतलब absolute peak, the Imran Hashmi phase. उस तरह से वो वाले गाने उसने जिस तरह से गाए हैं, वेरी डिफरेंट. बट देन यू कैन सी कि हाउ ही हैज मैच्योर्ड. पहले भी ऑफ कोर्स पहले भी बहुत अच्छे गाना गाता था, बट देन द सिंगर डेवलप्स अ फ्लेवर, राइट.
1: और एक यू नो जो उसके श्रोता होते हैं, तो उसको सुनने वाले होते हैं, वो पहचान जाते हैं,
0: राइट,
1: और उनको समझ में आता है कि अभी क्या इमोशंस है. इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक सॉन्ग में ऑफ कोर्स सब कुछ जरूरी है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा जरूरी है, लिरिक्स जरूरी है, बट जो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंगर होता है ना, जो भी चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में गा रहा हो, बट यू कैन समहाउ अंडरस्टैंड द इमोशंस.
0: यस, इसीलिए काफी बार काफी सारे गाने दो अलग सिंगर से गवाए थे.
1: अच्छा, जस्ट टू एक्सपेरिमेंट.
0: हाँ, ये नहीं पता है, जस्ट टू एक्सपेरिमेंट और व्हाटएवर, बट होता है ऐसे, बहुत बार होता है. और दोनों गाने बहुत फेमस होते हैं. ऑन टॉप ऑफ माय हेड मेरे को अभी याद आएगा तो मैं याद दिलाता हूँ, एक सलमान खान की पिक्चर थी लकी.
1: हाँ हाँ, याद है मुझे,
0: ठीक है, उसमें थी स्नेहा उलाल,
1: लकी लिप्स गाना भी था उसमें.
0: हाँ, तो उसमें गाना है सुन जरा,
1: सुन जरा,
0: ठीक है. वो दो दो दो सिंगर्स ने गाया, एक सोनू निगम ने, ठीक है. तो पहले सोनू निगम का फेमस गाना,
1: अच्छा,
0: ठीक है, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलराइज किया ही नहीं गया था, या फिर हुआ नहीं था, या फिर मेरे को मालूम नहीं है कि सेम गाना अदनान सामी ने
1: भी गाया है.
0: आई पर्सनली प्रेफर अदनान सामी का गाना.
1: ओके,
0: I don't necessarily listen to Adnan Sami songs. Very talented singer, again. But that particular song, I prefer listening to the Adnan Sami version.
1: ऐसे बहुत सारे, नहीं ऐसा पहले भी होता था, ये तो बहुत सारे बहुत पुराना ट्रेंड है.
0: हाँ,
1: कि अलग अलग सिंगर से गवाओ और देखो कि, क्योंकि हर किसी का पिच अलग है,
0: correct,
1: हर किसी की आवाज अलग है और लोगों को पहचान में आती है.
0: हाँ, तो the point that I was making is कि ये जो अब फ्लेवर निकालते हो ना, ये 10 साल हम खाली मोहित चौहान को सुनेंगे.
1: हाँ.
0: और उसके बाद में अपन खाली अरिजीत सिंह को सुनेंगे. और उसके बाद में अपन खाली विशाल को सुनेंगे. और उसके बाद में अपन खाली सोनू को सुनेंगे. Rather than doing this, why not have them sing at the same time? अरिजीत सिंह को नहीं गवाने का मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि
1: he should remain in the scene.
0: हाँ, he should remain, he should stay in the scene. Right. That is how, that is what my point is.
1: But no, they do stay in the scene. वो थोड़ा ब्रेक लेते हैं.
0: नहीं, किधर, where is Mohit Chauhan?
1: Tell me the last. अभी हाँ, actually Mohit Chauhan, हाँ सही बोल.
0: Tell me where is Sonu Nigam?
1: Sonu Nigam, oh he has disappeared. That's correct.
0: वही तो मैं कह रहा हूँ. तो it is not the singers.
1: But he was a very, उसका voice बहुत ही unique था.
0: अभी भी अच्छा
1: है.
0: अभी भी काफी अच्छा है.
1: हाँ.
0: अभी भी he is very talented.
1: तो
0: ऐसा नहीं बोल सकते अपन.
1: तो फिर आप तो आप हमें कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं?
0: अभी मैं कौन सा सॉन्ग सुना रहा हूँ? ओके, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 आई है.
1: 3 आ गई है?
0: हाँ, 3 भी आ गई है.
1: चलो गुड.
0: अभी नहीं है,
1: टाइम पास
0: हो गया उसको. टाइम हो गया अभी उसको.
1: अच्छा, टाइम भी हो गया.
0: हाँ, टाइम भी हो गया उसको.
1: गुड, टाइम
0: उसका गाना है. और उसका गाना है जानम समझो ना.

0: समझो ना. ओके
1: सुना. तो अपन वो सुनेंगे और उसके बाद में अपने को रैप मारना पड़ेगा.
0: अरे क्या बात कर रहे हैं, टाइम हो गया.
1: हाँ टाइम हो गया है. तो अगर गाना फिट होएगा तो मैं फिट करेगा, अगर फिट नहीं होएगा तो मोस्ट लाइकली वो गाना अगली बार बजेगा. तो मनवाटू धन्यवाद फॉर लिसनिंग टू अस. और थोड़ा बाहर निकलो, थोड़े रंग देखो,
0: ऑटम के रंग देखो, पतझड़ के
1: ऑटम के रंग देखो, सेल्फी वेल्फी निकालो. ऑलराइट सो थैंक यू वेरी मच शिल्पी जी आज मिलने के लिए.
0: थैंक यू मल्हार जी और थैंक यू मनवाटू. फिर मिलते हैं अगले हफ्ते.
1: फिर मिलते हैं अगले हफ्ते.
0: ओके बाय.